एडमिशन इन ए नवोदय विद्यालय इज ए टिकट फॉर प्रोस्पेरिटी इन लाइफ। नवोदय विद्यालय हेल्पिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन विच हु डोंट हैव देयर फैसिलिटीज और मीन्स, दे आर हेयर गिवन ऑल दीज फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। इन रूरल एरियाज पेरेंट्स दे केयर लेस फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, दैट्स वाई वी कीप 33% सीट्स रिजर्व फॉर द गर्ल्स। आफ्टर 2 years देयर विल बी 50-50।